0: Are you looking for a tutor? Do you need to brush up on your research or speaking skills? Perhaps you just want to boost your confidence. Well, York College Collaborative Learning Center offers free tutoring in person and online in room AC1C18. Meet with a tutor at york.cuny.edu/CLC or contact them at email clc@york.cuny.edu. Call them at 718-262-2303 or 718-262-2494. Again, meet with them in person or online. Meet with the tutor at york.cuny.edu/CLC or contact them via email at clc@york.cuny.edu. Call them at 718-262-2303 or 718-262-2494. This is brought to you by York College Collaborative Learning.
1: Share your message with YC Radio. Give your department, program, event, or student activity an additional voice with a YC Radio Public Service Announcement, PSA. Airing a PSA on YC Radio is a simple and effective way to complement your existing outreach efforts while expanding your message to students, faculty, staff, and listeners both on and off campus. Whether you're promoting an upcoming event, recruiting volunteers, highlighting a campus service, or sharing important information, we'll help you create a clear, professional PSA that gets your message heard. Creating a PSA is quick, easy, and free for your college departments, student organizations, faculty, and staff. For more information or to get started, contact 718-262-5293. Promote your event. Share your message. Reach the York College community with YC Radio. Visit ycradio.org, the voice of today's generation.
2: Hey, what's up? It's your girl, Kaya Baby, and you're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
3: York College আপনার জন্য একটি বার্তা আছে। York College পরীক্ষা কেন্দ্র এখন ইংরেজি ভাষার দক্ষতার জন্য TOEFL পরীক্ষার ব্যবস্থাকারী। এবং আপনি যদি দ্রুত কলেজ শেষ করতে চান তাহলে ক্ল্যাপে অংশগ্রহণ করুন। ক্ল্যাপ কলেজ বোর্ড দ্বারা উন্নত এবং 40 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত কৃতিত্ব পরীক্ষা। হ্যাঁ, আপনি যা শুনছেন তা ঠিক। York পরীক্ষা কেন্দ্র এই সব সুবিধা প্রদান করছে শুধুমাত্র আপনার জন্য। আমরা এসি ভবনের 94-20 গার আর ব্রুয়ার বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক, রুম নম্বর 1G05 এ অবস্থিত।
4: Get the word out with YC Radio. Give your department, program, event, or student activity an additional voice with a YC Radio Public Service Announcement, PSA. Airing a PSA on YC Radio is a simple and effective way to complement your existing outreach efforts while expanding your message to students, faculty, staff, and listeners both on and off campus. Whether you're promoting an upcoming event, recruiting volunteers, highlighting a campus service, or sharing important information, we'll help you create a clear, professional PSA that gets your message heard. Creating a PSA is quick, easy, and free for York College departments, student organizations, faculty, and staff. For more information or to get started, contact 718-262-5293. Promote your event, share your message, reach the York College community with YC Radio. Visit ycradio.org, the voice of today's generation.
5: धोखा धड़ी चेतावनी अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MAF ए कभी साझा न करें कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें अपने पासवर्ड या MAF ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF ए अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
6: Hey, this your boy Majesty the Rebel Lower East Side repping. You are listening to YC Radio.org, the voice of today's generation.